ये हिचलता फिजी रेडियो और मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश। हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं कुछ मस्त सॉन्ग्स, कुछ जानकारी और बहुत सारी बातें। दोस्तों साथी आपको स्वागत करते हैं हिचलता फिजी रेडियो के साथ लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और हमारे साथ आज पैनलिंग में साथ दे रहे हैं साहिल जी। और दिस इज आवर 706th एपिसोड ऑन अप्लाइंस मीडिया FM 96.9। और ये जो प्रोग्राम आप सुन रहे हो दिस इज फ्रॉम द सेंट्रल सिटी। जी हाँ, सेंट्रल सिटी मद्रास स्ट्रीट से हम ये जो एपिसोड यानी कि आज का जो प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस प्रोग्राम में थोड़ा ट्विस्ट रहेगा, हमेशा हमारे पास एक गेस्ट होते हैं और जब गेस्ट होते हैं देन वी डू हैव इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशंस, इंटरेस्टिंग जो हम कन्वर्सेशंस करते हैं और काफ़ी जो समाचार आप तक लाते हैं, कभी इवेंट्स रहता है लेकिन उसी

0: दौरान हमारे जो सॉन्ग्स है वो कम हो जाता है, सो वी आर नॉट एबल टू प्ले एज मेनी सॉन्ग्स एज वी वुड लव टू. और इसीलिए आज हमने सोचा है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग्स आपको सुनाएंगे. तो चलो हम देखते हैं कि साहिल के पास कौन सा पहला सॉन्ग है, और सॉन्ग के बाद में फिर हम कुछ और बात आपसे करेंगे.
1: तू

और आशा है कि आपका जो आज का सरल या अच्छी तरह बीत रहा हो रहा होगा। जी हाँ, और अभी हाल ही में आपने देखा होगा हमारा जो टैलेंट सीरीज भी चल रहा है डू कनेक्ट। और अगर आप भी कलाकार हो, अगर आपको मन चाहिए, देन डू कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल सी इफ यू कैन मेक अ स्लॉट फॉर यू। और अगर आप इस एन ऑडियंस आना चाहते हो, यू वांट टू सी हाउ इट ऑल हैपेंस, तो भी आ सकते हो। द सेटअप इज क्वाइट डिफरेंट, इट्स नॉट लाइक द नॉर्मल स्टेज शोज आप देखते हो यहाँ पे जब आप जाते हो। दिस इज मोर लाइक a show that is more like on recorder, जैसे आप TV screens पे देखते हो। So this is a different format. We are trying to do it for the social media, जो videos हम करते हैं। So you'll have a different experience if you do come, feel free। और चलो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा next song है, फिर हम और बात करेंगे।

0: and contact NZ Flames, Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements, and contact T. Nandan of Govai's Driving School if you need driving lessons, and contact Anshul Gupta of Client Real Estate who can assist you with achieving a better sale for your property, and contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city, and contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements.
1: जी हाँ दोस्तों, आते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये गीत पसंद आया होगा, और चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और भी एक सॉन्ग है आपको सुनाने के लिए, और आपको याद दिला दे कि हमारा जो KYC सेगमेंट है, नो योर कैंडिडेट, ये भी चल रहा है बिकॉज दिस इज द इलेक्शन ईयर, और वो भी आप देख सकते हो हमारे जलसा फिजी रेडियो फेसबुक पेज पे। तो इट्स ईजी, आप जलसा फिजी रेडियो फेसबुक पे जाओगे तो देखोगे, और अगर आप टिकटॉक का हो तो टिकटॉक पे भी हमारा जो जलसा फिजी रेडियो है वो भी आप जाकर देख सकते हो। उसमें भी हम कुछ वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं, एंड यू कैन हैव अ लुक ओवर देयर एज वेल। हम कहना चाहेंगे सभी जो कैंडिडेट्स है, यानी जो आते हैं आर्टिस्ट है प्लेटफॉर्म पर आते हैं हमारे जलसा टैलेंट सीरीज में, उनको भी हम कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे फॉर द हार्ड वर्क। और लोग काफ़ी जो टाइम निकालते हैं, सीखते हैं, तब आकर जो अपना जो टैलेंट है वो दिखलाते हैं। सो इट इज़ क्वाइट नाइस टू सी दैट, और काफ़ी लोग काफ़ी सपोर्ट में भी आते हैं। हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं, हम सबको शुक्रिया करना चाहेंगे, और आपको भी करेंगे, क्योंकि आप भी हमें जो सुनते हो सपोर्ट करते हैं, एंड दैट गिव्स अस एन इंस्पिरेशन कि हम ये जो रेडियो है काफ़ी साल हो चुका है, आई थिंक इट्स मोर लाइक 12 or 13 ईयर्स, और विथ योर सपोर्ट वी आर स्टिल गोइंग। तो देखते हैं हमारे पास कौन सा नेक्स्ट सॉन्ग है।

0: डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब टुडे प्लेइंग द सॉन्ग्स. और ये जो सॉन्ग आप सुन रहे थे, मुझे याद है कि ये जो मूवी आया था एंड देन द सॉन्ग वाज क्वाइट पॉपुलर, काफ़ी अच्छा सॉन्ग था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया था. लेकिन जो विजन अभी साल ने प्ले किया है, दैट इज मोर साउंडेड लाइक रिमिक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
1: Yeah, it's all remix.